0: ए खजूर, बाप की गाड़ी समझा गया?
1: टसन क्यों देता है बे खटारे वाले, हम तो मर्सिडीज रखने वाले हैं।
0: मुंह देखा क्या आईने में? अरे हटा सावन की घटा। ए भाऊ समझ जा, सुधर जा, पतली गली से निकल जा, चल चल चल।

चर जगत संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर देख कर अपनी चाल।
1: बाबा बाबा
0: धन्यवाद।

0: पर तूने हो जालिम, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा।
1: दिल रुबा दिल पे तू ये सितम।

0: साथ महके है दो गुलाब।
1: एक नूर में होते हैं दो मोती,
0: एक साथ धड़के हैं दो दिल।

अपने वास्तविक स्वरूप को परम सत्य है स्थापित करते ऐसा बुरा आत्मा बोध करो। महाराज परीक्षित।